All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज रिसीव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग. आज ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. हांगकांग में आंतर का कैंसर बहुत कॉमन है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको जल्दी पकड़ सकते हो और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. साथ में हेल्थी लाइफस्टाइल भी अपनाओ. शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. 50 से 75 साल के हांगकांग रेसिडेंट्स जो अभी ठीक हैं उनके लिए स्क्रीनिंग फ्री हो सकती है. अगर रिजल्ट नॉर्मल आए तो हर 2 साल बाद फिर स्क्रीनिंग ज़रूर करवाओ. ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.colonscreen.gov.hk. हेल्दी रहने के लिए आप रोज़ एक्सरसाइज करो, दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखो, स्मोकिंग और शराब छोड़ दो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो. आज ही स्क्रीनिंग करवाओ. ओके, एंड आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय रेमी, एंड द सॉन्ग इज कहाँ गया जी, कैलाबूज. कैलाबूज इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, डेडिकेटेड टू चाटुवस्की सिंह. ऑलराइट, एंजॉय दिस सॉन्ग.

ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक। बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज जॉब फेयर टू बी हेल्ड ऑन 22nd of July 2026। लेबर डिपार्टमेंट एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तारीख है 22 जुलाई 2026। दिन है वेंसडे, बुधवार। टाइम दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक। जगह है खालून वेस्ट जॉब सेंटर। इस जॉब फेयर में 6 कंपनीज 110 से ज़्यादा अलग अलग जॉब्स ऑफर कर रही हैं, जैसे प्रॉपर्टी असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, कॉमीज, टेक्नीशियन, लाइफ गार्ड, रूम अटेंडेंट, मैकेनिकल फिटर और भी बहुत सी पोस्ट्स। ज़्यादातर जॉब्स में चाइनीज लैंग्वेज की ज़रूरत बहुत कम है। एम्प्लॉयर्स वहीं पर ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज करेंगे। फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अवेलेबल है। इंटरेस्टेड हो तो पहले से रिजर्वेशन कर लो। कॉल कीजिए 2150-6397। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.jobs.gov.hk। मौका हाथ से मत जाने दो। हाँ जी, दैट्स इट। ओके, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। गाना है जी बॉडीगार्ड बाय नवान संधू। एंजॉय द सॉन्ग।

ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। बढ़ते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। ओ, जो पहला आई थिंक जो गाना रिक्वेस्ट किया था वो मनी ने रिक्वेस्ट किया था। आई एम नॉट श्योर कि मैंने बोला या नहीं, बट एनीवेज प्रीवियस सॉन्ग वाज रिक्वेस्टेड बाय मनी। ठीक है, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। आवर लास्ट अनाउंसमेंट इज प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा कोविड-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। इस सीजन में अलर्ट रहो, फ्लू कोविड-19 और सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अच्छी पर्सनल और घर की सफाई रखो, खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो, हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकेंड्स तक धो लो, बीमार फील हो तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो। गवर्नमेंट का 2025 और 26 फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल के और उससे ज़्यादा बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमजोर लोग और प्रेग्नेंट महिला। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.chp.gov.hk। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, ये जो गाना है इट्स रिक्वेस्टेड बाय एन अनोनिमस पर्सन और गाने का नाम है जी उडिका बिच बाय अरमान बेदे। इंजॉय द सॉन्ग।

All right, guys, that's it for me for today. मैं लेता हूँ जी आप सबसे अलविदा, और बाकी जो गाने लगने वाले हैं वो नॉन स्टॉप लगेंगे. मेरी आवाज़ जितनी कम से उतना बेहतर है. ओ बाय द वे, जो जो फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं उन सबको बता दूँ, फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना एंड स्पेन फाइनल में है, एंड दे शुड बी प्लेइंग वेरी सून. देखो कौन जीतता है. वैसे आई लाइक अर्जेंटीना मोर. शुरू से मैं अर्जेंटीना का फैन रहा हूँ बिकॉज ऑफ डियागो माराडोना, तो उसकी वजह से आई हैव ऑलवेज बीन एन अर्जेंटीनियन फैन. मेसी ऑफ कोर्स, वो तो अभी करंट जो है वो फेमस है. एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. होप द बेस्ट टीम विंस द फीफा वर्ल्ड कप. और The songs that are we're gonna play is up to you by Dhanda Niolewala, requested by Ankit Paul. Then we've got Rutba by Gulam Abbas, requested by Bilal Khan. फिर आते हैं जी हम नवा मेरे जुबिन नौटियाल. This one is requested by Chloe Cam. Then we've got Gigi by Gulab Sidhu, requested by Mandeep. And then we've got Put Jamate, Prem Tilloda गाना है. Requested by Amrit, and we've got One Call Away by Arjun Tilo, and this one is requested by Anam. Then we've got Eyes on Me by the late and great Sidhu Moosewala. This one is requested by Sonia Kaur. Then it's Jackpot by Chima Y, requested by Afai. Then we've got King by Shubh, requested by Bruno. Then Devil by Sidhu Moosewala, requested by Malik, and Levels by Sidhu Moosewala, requested by Chaudhary. All right, guys, that's it for tonight. Milte hain ji aapko next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye ji, chill karo, tension na lo, te jaldi kala chalo. Rab rakha, good night and goodbye.

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

लिया है नजीर नगेट कसम चीफ चॉकलेट सब पपन हमको जो जो चाहिए था हम सब ले लिया है और हम पैसा रखा है 3,000 हमको लेना है उससे अपना कपड़ा इसलिए हम 3,000 रखे हैं तो हम 2,000 का शॉपिंग कर चुके हैं ठीक है पापा आप कोई बात का टेंशन मत लीजिएगा खाना पीना ठीक से खाइएगा हम आपको गाना सुना रहे चंदा ने पूछा तारों से तारों ने